0: सोई सोई सोई ग बाई आंग तुझो नवो फिजा
1: सल सल सल सल्या मैं तुझे पुरने रजा तो काम शेता

आरिस म्यूजिक आने में तबले मका एक सुरक्षण राव राव राव को सामने तेरा रिद्म का सुरा इमोशन टू आरिस